0: times. Temperatures will range between 26 and 29 degrees tomorrow. Moderate to fresh southwesterly winds, occasionally strong offshore and on high ground at first. Right now at the observatory, it is 29 degrees and the humidity is 84%. Please be reminded that the thunderstorm warning is in force. The news from RTHK. RTHK.
1: प्रोग्राम सुनिए हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ. तावुन है होम अफेयर्स डिपार्टमेंट का.
2: अस्सलाम वालेकुम. इतवार की शाम है, हांगकांग की शाम में हमारा और आपका एक बार फिर साथ है. आरटीएच के रेडियो 3 पर यह महफिल सजती है आवाज खजाने के खूबसूरत मोतियों से हर इतवार की शाम सन 2004 से.

0: अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं गुलाम अली, गजल गायक। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम।
1: क्या आप मुलाजमत की तलाश में हैं और सोच रहे हैं कि आपको रोजगार से मुतालिक रहनुमाई या मदद कहां से मिल सकती है? लेबर डिपार्टमेंट पूरे शहर में 10 जॉब सेंटर्स चलाता है, जहां मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बिल्कुल मुफ्त खिदमात फराहम की जाती हैं। आप किसी भी जॉब सेंटर में ताज़ा तरीन खाली आसामियों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। आप वहाँ मौजूद एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र से मुलाकात करके अपनी रोज़गार की ज़रूरियात पर बातचीत भी कर सकते हैं और ऐसे खसूसी रोज़गार प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो आपकी मुलाजमत हासिल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। खसूसी तौर पर आप रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, जिसके तहत नस्ली अकलियतों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को रजिस्टर्ड सोशल वर्कर के जरिए केस मैनेजमेंट के अंदाज में एक ही जगह तमाम रोजगार मुआवन खिदमात फराहम की जाती हैं। लेबर डिपार्टमेंट अंग्रेजी और चीनी जबान में खिदमात फराहम करता है। अगर आप अंग्रेजी या चीनी नहीं बोलते तो महकमा आपके लिए मुफ्त तर्जुमान की सहूलत का इंतजाम भी कर सकता है। मजीद मालूमात के लिए लेबर डिपार्टमेंट की इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस की वेबसाइट पर नस्ली अकलियतों के लिए मखसूस सफ़ा मुलाहिज़ा करें www.jobs.gov.hk/em या इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। कलाम शायर बज़ुबान शायर में आज आपको सुनवा रहे हैं फैज अहमद फैज का कलाम उन्हीं की आवाज में।
2: ताज़ा है अभी याद में साकी गुलफाम, वो अक्सर रुखे यार से लहके हुए अयाम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार के साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम, उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे, अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकद्दर, इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, उस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार कसीम आब, उस राह पे फूलेगी शफक तेरी कबा की। फिर देखे हैं वो हिजर के तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलो जामे फवां भूल गई है, हर शब उसे आबोज के दिल बैठ गया है, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है, तन्हाई में क्या क्या न तुझे याद किया है, क्या क्या न दिले जार ने ढूंढी है पनाहें, आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली हैं कभी गर्दन महताब में बाहें, चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल इसकी लगन में, ढूंढी है यहीं शौक ने आसाइश मंजिल रुखसार के खम में, कभी काकुल की शिकन में, इस जान जहां को भी यहीं कल्ब नज़र ने हंस हंस के सदा दी, कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हर्फ तमन्ना के तकाजे, हर दर्द को उजियाला, हर गम को संवारा, वापस नहीं फेरा कोई फरमान जुनू का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जरस की, खैरियत जान राहत तन सेहत दामा, सब भूल गई मसलहतें अहले हवस की, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पस जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, गरजे हैं बहुत शेख सरे गोशाए मिंबर, कड़के हैं बहुत अहले हकम बरसर दरबार, छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नावक दुश्नाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क न उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत।

अर्जुए जान लिखूं या जाने अर्जू, तू ही बता दे ना से ईमाने अर्जू। आंसू निकल रहे हैं तसव्वुर में बन के फूल, शादाब हो रहा है गुलिस्ताने आरजू। ईमानो जान निसार तेरी एक निगाह पर, तू जाने आरजू है तू ईमाने आरजू। मिसरे फिराक कब तलक ऐ यूसुफ़े उम्मीद, रोता है तेरे हिजर में कनाने आरजू। होने को है तुलू सबाहे शबे विसाल, बुझने को है चरागे शबिस्ताने आरजू। एक वो के आरजुओं पे जीते हैं उम्र भर, एक हम कहें अभी से पशेमाने आरजू। आंखों से जुए खून है रवां, दिल है दाग दाग, देखे कोई बहारे गुलिस्ताने आरजू। दिल में निशाते रफ्ता की धुंधली सी याद है या शमे वसल है तहे दामाने आरजू। अख्तर को जिंदगी का भरोसा नहीं रहा, जब से लुटा चुके सरो सामाने।